रख लूं, ऐ अर्ज़े मदीना काश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत।

आश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। ओ द मुबारक एंड ब्यूटीफुल अर्थ ऑफ मदीना शरीफ। काश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। द होल ऑफ मदीना शरीफ इज जन्नत। वेन इन द मस्जिद ऑफ नबी अलैहिस्सलाम वी हैव द पीस ऑफ ग्राउंड मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तु मिन रियादिल जन्नत, between my home and my mimbar, garden from the gardens of paradise. Besides the other explanations, one is that explanation that that very piece of ground will be turned into Jannat on the day of Qiyamah. And he also said that it was from Jannat. So Madina Sharif is nothing but Jannat. The Masjid of Nabi alayhi salatu wasalam is Jannat. Then there is Riyazul Jannah and the Rosa Mubarak of Nabi alayhi salatu wasalam. اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، جن جنت ہے تو جنت ہے، سرکار دو عالم کی۔

का दामन वजुज आह के कुछ हमारा नहीं है, सिवा तेरे कोई सहारा नहीं है, सिवा तेरे कोई

लिखा है, जिस हाल में भी वो रखते हैं उस हाल को अकमल देखा है, जिस राह को हम तजवीज करें उस राह को असकल देखा है, जिस राह को हम तजवीज करें उस राह को असकल देखा है, जिस राह से वो ले जाते हैं उस राह को असहल देखा है, जिस राह से वो ले जाते हैं उस राह को असहल देखा है। व्हाट एवर द कैफियत्स, बेकैफी में भी हमने एक कैफ मुसलसल देखा है, कंटिन्यू।

0: ना खुद भी अगर में पिसे अल्लाह एम शैतान एम खबीस या अल्लाह आई ऑलवेज फॉरगेट यू बट ओ अल्लाह मेक माई हार्ट सच दैट इवन इफ आई वॉन्ट टू फॉरगेट यू आई डोंट फॉरगेट यू आस्क हिम ही इज अवर रब देन ही विल मेक अवर हार्ट्स लाइक दैट वे इवन इफ वी वॉन्ट टू फॉरगेट अल्लाह ताला He will not allow us to forget Him. He will create a barrier between us and sins. When shaitan and nafs will put pressure on us, commit this sin, Allah Ta'ala will create some barrier and the person won't go towards it. So we ask Allah Ta'ala to give us such a heart that even if we want to forget Him, we don't forget Him.
1: Bhool sakun ta umran tujhko chahun bulana khud bhi agar mein.

नजर पे दिल पे यूं ही लगाए जा, खोले वो या न खोले दर उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर यानी सौदा लगाए जा। यू डू योर वर्क, कीप ऑन टैपिंग एट द डोर एंड द डोर विल ओपन। It's not like our telecom that your call will be answered and sometimes it's never answered. Lots of calls, they tell you, hold on, your call will be answered, and you keep on holding and it's not answered. This door will open.

गोन निकल सके मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। यूज द विंग्स दैट अल्लाह ताला हैज गिवन, फ्लैप दोज विंग्स, फ्लैप दोज विंग्स। दिस इज वॉट ही डिड, ही वॉज फ्लैपिंग दोज विंग्स एंड अल्लाह तबारक व ताला हर्ड हिज कॉल। सो ही सेज, अर्श तक पहुंची तेरी आहो बुका, मुश्तरी तेरा है खुद रब्बुल उला।